पापी आखण नाहि कर कर करणा लेख लै जा तीर्था दया दात दान जे को पावे तिलका मान सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत ना होए कमन सो विया वक्त कमन कमन थेत कमन वार वेल न पाया खंड ती जे होवे लेख पुराण थित वार ना जोगी जाने रोत माना कोई क्यों करे आखा क्यों सलाही क्यों वरणी क्यों जाना

0: सर्वं करीम है
1: के सर्वं कली है के सर्वं दली है
0: के सबत माने के सबत दाने है
1: के सबत्र गौण है के सबत्र पौन है
0: के सबत देश है के सबत पैसा
1: के सबत राजा के सबत्र साजा।

0: रूपे न रखे
1: अकर्म अपरम गंजे लेखे
0: उद्यम प्रयाचन नमस्त प्रणाम में समस्त प्रणाम से
1: अगंजल अनामे समस्त निवासे
0: काम विभूते समस्त स्वरूपे
1: कुकर्म प्रणासी सुतर्म।

Donkey Agenda, Bungay Joga Jogata, Tamka Jaka Kasaji Sapology, Sikhadaman Niva Matuji Matpata Rakha Garbarji, He Garbarji, Apne Pansuda Seda Tajio, Shinan Kana Sato Horgoda, Gutta Mateta, and a Pansuichura Gaha, Kulitashundi Taji Seva Sambhaza Tan, Pyarajina Bakshaji, हे नमाने दिमाग सदगुरु ने ताने दिता सदगुरु ने और चंद्र और सच्चे पिता भाई दीजिए आपकी है जो नाम अभ्यास इतने इतने दिए दास है जी अखर दावा दाका टापर चुम्बा करने अगे तो सोची पक्ष ने कड़ा प्रसाद देख दी हाजिर है भोग लौना हुक्मनामा बख्श के संतानों ने हाल करो जी सही प्यारे मेरे जना मेरा तेरे नाम चेते आवे नानक नाम

हंस जल से डूबना ए तंटे रीते से को ओंकार सतनाम करता गुरु निर्गुण वैर अकाल मूर्त अजूनी सर भंगुर प्रसाद राग लाव महला पहला सब दे कर पहला तू सुल्तान को मैं तेरी कम उड़ाए जो तू दे सुखान स्वामी मैं मूर्ख कह न जाए तेरे मन भावन दे हो जाए जैसे सत में रहूं रजाए रहाव जो कुछ हुआ सब भी तू ते तेरी सब सुनाए तेरे अंत न जाना मेरे साथ जो न तेरे कैसे राय क्या हों कति कथे कथे कहना कथना कथना जाए जो कुछ पाए सोई या कति तेरी उड़े आए एते कोकर हूँ बेकाना तो पाँच संताए भक्ति नाम दे हुए दाता कसमे नाम जाए बिलाव निला बैला मन मंदिर तम से बंदर कटी कीती नाव एक सब मेरे मन बह मावे मेरे प्राण दस्त है बहुत जन मनाया मन पिता दिया कीती मीर माए कौन जाने की पुराई हम नाहे जिन पुराई रहा हुकुम उतरल को अचिंता करो तुम्हारी जब कर मेर कर तो बिना कर कर जो तुम्हारी सिख बादशाह मुझ तुम्हारी मंदिर छावा तेरे तुझ में अवरण जन मेरे साहबा गुम भाई तेरे जी जन सब जन तुम्हारे सब चंद विकास सोई चंगा एक नानी की अरदास बुलाओ मोहन अपने आप के शब्द अपने जाने आपके सोच आपके जाना आपके कर कर वेखे तां तू दाता नाम ने प्रभा ने असान मन ने दे हो चाचू ने आवे करते हो रहा माया मूत्र किनारे कुंडी काम काम ने यार राजू की साजन चार ना मिले चरण निहार चक्षु भी सहसा नहीं कोय अब देवे जात ना हो एक कोय को ना ही को कोय करता कर करावे सोए सब मैं मन मुते मारे अठा मन साचे धारे आवरण सूज गुरु को वारे नान पान के निस्तारे बिलावल महला बिलकुल वचनी मन सहे जिया ने हर के रंग रता मन सा मन माने मन उपरम पुलेत बोला ने हर बिन क्यूर किए गुरु शब्द साहब ने बिन दर्शन दे के कैसे जीव मिल माए हर बिन जी रहे सके किन सतगुरु बुझ बुझाए रहा मेरे प्रभु श्री हों मरो दुखा लय दुखा लिये सात ग्राज को अपने हर भाले सत बैर आगन हर नाम निहार आप जाने गुरमुख हर नाले पद पिता कहिए गुरु भाए प्रभु कहूँ गोचर दे दिखाए बिन गुरु चराए करने क्या कर कमाए हों मे मेरे चले गुरु शब्द समाए मानो पूछे हो की दास गुरु नाम ले सावास हर कृपा तारी दास संदास जन नाम खर नाम धनदास बिलावल महला तीजा कर कर लय कौन का सब प्रसाद त्रिक त्रिक खाया त्रिक त्रिक धोया त्रिक त्रिक का भोग चढ़ाया त्रिक त्रिक कौन रुक है सो जिस मुख को न खाया को भी छोट की फिर अपने आ गया दिन गुवाया दूजा भाव न दे लागण जिन हर के जन अनुसार जब जिन दाता जन सेवक तेरे तिनके ता जो वाले रहा तू दयाल दया प्रदाता कह जिन विचार मुक्त सान सब कुछ होए ऐसा कुरुकान दे गुरमुख सो मुक्त कहिए मानुख बंद विचार बंद विचार जो सो जन मुगत जिसेक निवला की सदा रहे नाले तुम की कहेंगे कई मन जाए सचे आ विचार भ्रम पुराण से मन कही ना और बार ना पारे जिसन नदर पे सो जन पाए गुरु कर सो तुम माले हर जन माया हर मन सारे हर नाम पाप दे जिस मस्तक कल राग मिदार बिलाल महला बनिया तुल को चलिया जाए तुल जाए तो सो जी पाए दे ते जो नाई को जिसकी कीमत की को होए इसकी कीमत की को है गुरु प्रसाद से मन आए तां के जाने तुल जाए रहा वो आप सराब सो पीला आपे पर के आप चलाए आपे तुले पूरा होए आपे जाने तो सोए माया का पर रूप सब तिसे होए जिस नो मिले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगे जे तिसे आए सब साथ रखा ले जा तां सब समाए आपे लिए बताता है आपे आपे आप जाए आपे जाए आपे गुरु मुशल है आपे नाम गुरु आप सुनाए आपे बुलावल महला तीजा साहब के से उसे उतार के क्या को करे हां न कह सका ना ऐसा के भीर बनाया है सब मैं एक समाना सब गुरु पर जे हर नाम संभाल ना जिस कर्म हुए सो सत गुरु भाए अंदिन लागे है के न रहा क्या कोई करे क्या कोई तेरी सेवा करे क्या कोई करे गुमा ना जे अपनी जोत निश्चिन चाहे स्वामी तब कोई करो दिखा रुखया ना आपे गुरु चेला है आपे आपे गुण निभाना जो आप चलाए ते कोई चल जो हर पावे प्रभुहा ना कहे तो नानक गुरु सच्चा साहेब हाँ कौन जाने तेरे काम आए कना घर ना देवड़ी एक भरम पुआ गुमाना लाल महा

अपने मां बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी मिलत संग सब ब्रह्म मिठे गत पै हमारी जादन पेटे साध मोय वांदन बलिहारी तन मन अपनो जिया रा फिर हों वारी राहो ए छडाई मोते इतने दृढ़दारी सौरे ने मन भया निंसी अवतारी निंद चिंद पर दुखणाए खन मैं जारी दया म्यार निकट भेग नाही दूरारी मंतन शीतल भये अब मोते संसारी ही चीज अपराण।

तुम समर्था कारण करण ढाकण ढाक गोबिंद गुर मेरे मोहे अपराधी सरण चरण रहाओ जो जो कि सो तुम जाने हो पे उठाओ ना ही ढीठ मुकरण बड प्रताप जनयो प्रभ तुमरो कोट गा तेरो नाम हरण अमर स्वाओ सरा सद पूजन तुमरो बिरद पत धन करना मैं कृपाल कृपा ने तो जीवन पद नान कर दर्शन दा

जन्मतीर्थ कोट गंगा जन की तुर गियो मजन नानक जन्म जन्म के हरे गलंगा बिलाल माला पौजवा ज्यो पावे त्यो मोहि प्रतपाल पादम परमेश्वर सतगुरु हम भारत में पिता कृपाल रहाओ मोहिंद्र गुण गुण नहीं कोई पहुँच ना कर सो आखो तुमरी काल तुमरी गत में तुम्हें जानो जी पिंड सतो रो माल अंतर जामी प्रभु स्वामी अनबोल ते ही जानो हाल तन मन शीतल होए तो मारो ठाकुर

चरण कमल की तीर्थ दर्शन स्वामी सुख सारो बिलावल माला पंजवां आज्ञा पाशै कुशल पया गुरपूरै पूरी सब राखी पादम प्रभकिनी माया रहाओ मन तन रव रहा हर प्रीतम दुख दर्द सब लाभ मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाए दूत दुख सब होए खया गुण अवगुण प्रभ कछु ना बिचारियो कर कृपा अपना कर लया तुल

द्वारे आयो तो मैं लालन पायो री मोहन रूप दिखावै मणि सुहावै सब मेरी दिखा बुझानी। अब मैं सहज समानी मीठी पर कहानी मोहन पाय मोहन लालन पायो री रहा दूजा बिलावल माला पंजवा मोरी अंग जाए दर्शन पाप

तलाब उसे कर्म कमैया नानक जंत बजाए बाज जाए जित भावत राज चलैया बिलावल मल्ला चौथा गुरमुख अगमा गोचर ते आया हूं बल बल सतगुर सतपुरखैया राम नाम मेरे प्राण वसाए सतगुर प्रसार नाम सुमैया जन की तेगार नाम टिकैया सतगुर की धर लागु जावा गुर कृपा ते हर दर लैया राहु ए शरीर कर्म की तरती गुरमुख मत मत तत कढ़ैया लाल जवेर नाम प्रकाश पांडे पाओ पवन ते रैया दस दास दास होए रैया जो जन राम पाओ निज पैया मन बुद्ध अर्पतरों गुरे आ गया गुरु प्रसादी मैं अकथ कदैया मन

पुजारी कई कुड़ाचार विहारी कई कुड़पति तीर्थवासी कई कुड़बन पर मेवदासे कई कुड़ वेद के स्रोत है कई कुड़ भी स्रोत है कई कुड़ा तुम त्यंतार है कई कुड़ कव का विचार है कई कुड़ नव तो नव त्याव नानक करते गंत न पावे कई कुड़ भय मानी कई कुड़ अंध ज्ञानी कई कुड़ कृपण कठोर कई कुड़ अभिगत निकोर कई कुड़ पर द्रुप कुहिर कई कुड़ पर दुखना करे कई कुड़ माय सुनमाय कई कुड़ पर दे सुनमाय जे जलाव ते तलबना नानक करते की जाने करता रचना कई कुड़ से जति जोगी कई कुड़ राज रस भोगी कई कुड़ पंखी स्वरूप पाए कई कुड़ पात्र बिरखण बजाए कई कुड़ पौन पानी बसंतर कई कुड़ दे सुमंडल कई कुड़ सचिर सुरण कैतर कई कुड़ देव दान दर्शन छात्र सगल समग्री अपने सुतार नानक जिस दिस भाव है ते से निस्तार कई कुड़ राज तम सात गए कई कुड़ वे त्रां सुमरत अर सासत कई कुड़ की रतन समुंदे कई कुड़ नान प्रकार जंत कई कुड़ के चिर जीवे कई कुड़ गिरी मेर सुरण थीवे कई कुड़ जग निर्पिसाच कई कुड़ भूत पै सुकर मिर्गा सब ते निरे सबू तै दूर नानक अलग त्रै भरपूर है कई कुड़ पाताल कवासी कई कुड़ नर सुनवासी कई कुड़ जन्म जीव मरे कई कुड़ बोझो नहीं फिरे कई कुड़ बैठती खाए कई कुड़ काले थक पाए कई कुड़ के तनवंत कई कुड़ मा मैं चिंत जह जय भाणा तह तह राखे नानक सब की प्रभु के आते कई कुड़ पै बैरागी राम नाम संग चुने लागे कई कुड़ पै प्रभु को खोजनते आतो मैं पार महंते कई कुड़ दर्शन प्रभु पया सिंह को मिले प्रभु विनाश कई कुड़ मांगे सत्संग पार बिंद लागा रंग जिनको हो आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कुड़ खानी अरखंड कई कुड़ आकाश ब्रह्मांड कई कुड़ अवतार कई जुगत गिन विस्तार कई बार पसर पासार सदा सदा एक ओंकार कई कुड़ किन्ने भूपात प्रभु तय प्रमात समात आकंत न जाने को आपे आप नानक प्रसोए कई कुड़ पार पुंके दास तिन होत आत्म प्रकाश कई कुड़ तद गिवेत सदा निहारे को नेत्रे कई कुड़ नाम रस भी में मर पै सदा दे जीवे कई कुड़ नाम कुआवे आत्म रस सह समावे अपने जन को सा समारे नानक परमेश्वर के प्यारे सा।

गर्भ गले स्वाई जिसके अंत राज मानसो नर पति हो सो आंजो न जाने में जो गुण मानसो तुस्ता का जानते आप सो करवंत का वे दिन मरे भोजन क्रमाए तन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा के आन कर कृपा जो केर जगरी व्यवसावे नानकिया मुक्ता के सुख पावे तन मंतावे कर करवावे त्रिन सुमान कर संग न जावे बोलो स्क्रमान को पर करे आस पर पितरता का विनाश सौते आप जने बलवंत किन में होए जाए सुमंत किसे न बधे आवंकारी तरम रात करे कुमारी गुरु प्रसाद जा कामटे अवमान सो जनंग दर के प्रवान कोट कर्म करे उतारे शरम पावे सगले विठारे तपस्या करे अंकार नर सुर फिर फिर उतार अनेक जतन करे आत्म नहीं द्रवे हर दर के को कैसे गवे आपस को जो भला कहा वे तुसे भलाई न अपने आवे सर्व के जा कमन होए कहो नानकता की निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब उसको सुकुनाई कोई जावे जाने मैं कुछ करता तब लगर जुन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग नहीं चलना ची जब लग मोह मन संगमाए तब लग तर मुदा दे सजाए प्रभु कृपा दे बंधन टूटे गुरु प्रसाद नाम खो छूटे सस कटे लो करोड़ लख उड़ता वे त्रिप्त आवे माया पाछे पावन भोग विख्या के करे न त्रिप्त आवे खप कमरे बिना संतोष को राजे सुपन नोर्थ करते सब काजे नाम तंग सर्व को बड़वागी किसे प्राप्त हो करण क्राम ने आपे आप सदा सदा नान कर जाप करण क्राम न करण हार इसके याद काम विचार जैसे दृष्ट गए तैसा हो आपे आप आप प्रभु सो है जो कुछ किन सो अपने रंग सब ते दूर सबों के संग बुझे दे के करे वे कापे कापे अनेक मरण जिन से आवन जाए नानक सदी रह समाए आप उपदेश समझे आप आपे रचा सबके साथ आपकी नु आपन विस्तार साब का सुस गौ करण हार से भिन्न को कुछ होय तां तन अंतर कैसो होय अपने चलता करण हार को तो कर रंग अफार मन में आवन अपने माए नानक कीमत कह न जाए सत सत सतगुरु स्वामी गुरु प्रसाद ने वखिया।

राष्ट्रवादी संत के दुख निहार जगट है, संत को दुख जमते नहीं छूटे, संत को दुख सुख जाए, संत को दुख नरक में पाए, संत के दुख मत हो मिले, संत के दुख सुख बातें हीन, संत के तक रख न को संत के दुख तान भ्रष्ट हो, संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भी तारे, संत के दुखन ते मुख पवे, संतन के दुखन का जुलवे, संतन के दुखन सर्व जन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन के दुखन ते जन्म जलाए, संत के दुखन सब कौशल है, संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच न जाए, संतों की गाथा को नाहे नानक संत पावे तो भी गत पाए, संत का निंदक मां दताए, संत का निंदक टिक न पाए, संत निंदक मां ते आरा, संत निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखी आरतीन, संत का निंदक को सर्व रोग, संत का निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत भाव तो उसका भी है मोक, संत का दुखी सदा पे, संत का दुखी किसे का नहीं मैत, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी मांग कारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत के दुख ना सुख ते डरे, संत के दुखी को ना ही ठाव, नानक संत भाव तले मिलाए, संत का दुखी आदमी ते टूटे, संत का दुखी किते काज न पहुंचे, संत का दुखी ध्यान फरमाए, संत का दुखी जड़ पाए, संत का दुखी अंतर ते थोता, जो सासन मृत की लोथा, संत का दुखी जड़ पिजनाए, अपन भी जा पे खाए, संत का दुखी गवन राखन हार, नानक संत भावता ले उहार, संत का दुखी अंबल लाए, जो जल भी हूण मचली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, संत का जो पाव कितनी त्रापै, संत दुखी छुटे केला, जो बुआ तिनकी तुम्हारे जोहेला, संत का दुखी धर्म तिरैते, संत का दुख संग थे कहते, कीर्तन निंद का तुरी भया, नानक जो तिस मावे सोई थे, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत का दुखी गोदर के मिल से जाए, संत का दुखी सदा सह काइए, संत का दुखी न मरण जवाइए, संत के दुखी पूज निरासा, संत के दुखी चले निराशा, संत के दुख न तिष्ठे कोई जा सा पावे तसा कोई होय पै, कीर्तन मिटे कोई नानक जाने सच्चा सोय, सब घर तिस क्यों करणे हार, सदा सदा तुसको नमस्कार, प्रभु के सुत करो दिन रात, तिसे त्याओ साथ गिरा, सब का जोर ते तुका किया, जैसा करे तैसा को दिया, अपना फेलाओ करणे हार, दूसर कौन के विचार,

तू टी का ननहार गोपाल सर्व जिया पे प्रताप सगले चिंता सुमन माए तिस ते वीरता को इनाग श्री मन मेरे सुधार जाप अवनासी ब्रह्म आपे आप आपन के आकर्ष न हो जे सुप्राणी लोचे को तिसमें ना इतरे कुछ काम गत नाम जाप ही करना रूपन तो ना ही मोए प्रभु की जो सर्वगण सोए धन हंता क्या को कर पे सब की तिसका दिया दर्पे असुरा जी को कहावे प्रभु की कला बिना कहता जे को होए बै दाता तिस दिन हर जाने गवार जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सोजन सदा रोग ज्यो मंदिर को थामे दमण त्यों गुर का शब्द मणे स्तमण जो पाखा नाव चढ़ता रहे प्राणी गुर चंदक निस्तर जो अंधकार दीप प्रकाश गुर दर्शन देख मन होए विकास जो माओ ध्यान में मार्ग पावे तुम साधु संग मिल ज्योत बढ़ावे तुम संतन की बाचो तूर नानक की हर लोचा पूरे मन मोरे काय बिलाई प्रुलिखे का लिखिया पाई दुख सुख रा देव हारे व्रत्याग तू तुसे जितार जो कछ करे सोए सुकमान भूला कै फिरे जान कौन बस ताई तेरे संग लपट रस लोक तंग राम नाम जब हृदय माए नानक बस ती कर जाए जिस वकर को लैन तो आए राम नाम संतन कर पाए तज मान ले मन मोड़ राम नाम हृदय मैं तौल लाद खेव संत संचाले अवर त्याग किया जंजाले धन धन कैसा कोय मुकुजल हर दर कैसोय एह अपार वरना अपारे नानक तां के सतुल हारे चरण साधक तोय तोय पियो और साधको अपन जियो साधक धूर करो स्नान साधु प्रजाई कुर्बान साध से अवड भागी पाई साध संगर कीर्तन गाय निकुंते साधु राखे यार कुंगा मतरा चाखे उठ गए संत दरिया सर्व सुख नानक ते पाए मेरत को जीवालन हार भूखे को देवत आधार समझा की दृष्टि माए पुरुल के का लेना पाए सब कुछ तिस का करने जोग तिस में जो सुरहान होग जब जन सदा सदा तिन डाणी सब तुझ निर्मल करनी कर कृपा जिस को नाम

सरस्पदी संत संग अंत प्रभु दीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक स्कट माहे अनकरंग नाना दिष्टाए नहुन अमृत प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तै नाद कह न जाही चरण समाद तिन देखिया जिसाब दिखाए ना जन सो जी पाए सुवंत सो बारे अनंत घर घर व्यापरिया भगवंत तरन माहे आकाश प्यार सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंतिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पवन पानी बैसंत्र माहे चार कुंड दै दिसे समाए तिस्ते पिन नहीं कुठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमृत मैं देख सस्य सुर नखत्र मैं एक बाणी प्रभ की सब को बोले आप अडोल न कभू डोले सर्व कला कर खेले खेल मोल न पाई गुणे मोल सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत धार जो स्वामी उत्पूत गुरु प्रसाद परम का नास नाक तिन में विसास संत जना का पेखण सब ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म संत जना सुनो सुबचन सर्वव्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी है रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करन करावन हर प्रभु जाने अंतर बसे बार पी उही नानक तरसन देख समोही आप सत किया सब सत तिस प्राप्ते सगली उत

अंतर्गत आपनाय नागत जना पुजाय सर्वभूतावृतारा सर्वनेना पेखनहारा सगल समाग्री जा का तना अपन जासा पी सुना आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया सबके मद अल्प तो रह जो किस कहना सो आपे कहे आगे आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता ले समाए इस ते वे सो ना ही बुरा उरे कहो किने कशकरा आप भला करतु ततनी की आपे जाने अपनी जी की आप साच धारी सब साच उत पोता आपन संगराच ता की गत मित कही ना जाए दूसर होए ता सो जी पाए तिसका किया सब प्रवान गुरु प्रसाद नान ए जान जो जाने तिसरा सुख होए आ मिलाए ले प्रभ सोए ओ तनवंत कुलवंत पतिवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जने आया जिस पर

सासा स्मरोग बिंदा मन तिथि उतरा चिंदा आसन त्यागो तरंग संतरंग तू मन मांगा आप छोड़ बेनती करहो साल संग अग्न सागर तरहो हर तन के पर लियो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद।

पावो कल कलेश कर मैं मिटावो सिमरो जास सुंबर एक है नाम जपत गणत नेक है तेज प्राण सिमर सुधाखिर की राम नाम एक आखिर।

श्रीराम रहाओ। प्रभु का सिमरन गर्भ न बसा, प्रभु का सिमरन दुख जम नसा, प्रभु का सिमरन काल पर हरा, प्रभु का सिमरन दुश्मन तरा, प्रभु सिमरत कश विघ्न लागे, प्रभु का सिमरन अंधन जागे, प्रभु का सिमरन पवन व्यापाय, प्रभु का सिमरन दुख न सुनता पाए, प्रभु का सिमरन साध का सांगो, सर्वन जान नानक हार रंगो, प्रभु का सिमरन हृदय से नौ नेद, प्रभु का सिमरन ज्ञान ध्यान तात बोधो, प्रभु का सिमरन जप तप पूजा, प्रभु का सिमरन बिन साध दूजा, प्रभु का सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु का सिमरन दरगाह मानी, प्रभु का सिमरन होय सुफला, प्रभु का सिमरन सुफल फला।

प्रभु के सुजन प्रभु का स्मरण नाई जम प्रसा प्रभु का स्मरण पूर्ण आशा प्रभु का स्मरण मन की मल जाए अमृत नामृत मय समाए प्रभु जी बस साध की रसना नानक जन का दास सुन दसना प्रभु को सिमरन से तन वंते प्रभु को सिमरन से पात वंते प्रभु को सिमरन से जन प्रवान प्रभु को सिमरन से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरन से बेमोह ताजे प्रभु को सिमरन से सर्व के राजे प्रभु को सिमरन से सुखवासी प्रभु को सिमरन सदा

पाए। हर सिमरन प्रसिद्ध जति दाते, हर सिमरन चौंकुंट जाते। हर सिमरन तारी सब करना, सिम सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगले कारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिसा बजाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया।

हर को नाम किनमय उधारे हर गुणा चरण कर नहीं तराए हर को नाम कोट पाप पर हरे गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगले श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपो सुखिया लाह करोरी बांधना पर हर का नाम जप निस्तर अनक माया रंग तेखना बुझावे हर का नाम जपते आवावे जी मार्गे जाते केला ते हर नाम संगो सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याई है नानक गुरु परम गत पाई है छूट नहीं कोट लाख बाही नाम जपते पार पराही अनक बिघन जाय संगारा है हर का नाम तत्काल।

ध्यान त्रिख मन तुझिया कर खै त नानक हर हर अमृत वरखै। भगजना की बरतन नाम संत जना का मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट हर का नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन

नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जप को परना भंग हर का नाम जन की वड़ियाई हर का नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जप काश नाम वियोग धन रत

तक अंतर जामे अपनी गतमत जानो आपे अपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस तुमते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम करिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगले उद्यम मैं उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जा सुन रस

मिथ्या हस्त पर दर्भ कोहिरा मिथ्या नेत्र पेख पर त्रुपाद मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद मिथ्या चरण पर्व कर कोतावा मिथ्या मन पर लोभ लुभा।

कमावत माने पीत मुखों गांड लावत धन हार प्रभु प्रवीण बार भेख न काहू पीन अवर उपदेशाय आप न कराए आप जापत जन्म मराय जिसका यंत्र बसा नंकार तिसकी सीख करा संसार जो तुम पाने तिन

नानक ताकी भगत करे जे प्रसादा भूखन पहरी जाए मन ते सिमरत क्यों आलस की जाए हे प्रसादा सो हस्त सवारी मन ते पवको कवुना बिसारी हे प्रसाद बाक मिर्क तना राख कोय पवकने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उड़क बैठ सत सत आई तिसे त्याय जो एक लखा है इहा उहा नानक करी रखा है हे प्रसाद करें पुन बोदान मन अठ पैर कर तिसका ध्यान जी प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस पर को सा सा चितारी जी प्रसाद

प्रसाद सुख सहित बसना, हे प्रसाद हस्त कर चलाए, जे प्रसाद संपूर्ण फल, हे प्रसाद परम गत पावे, जे प्रसाद सुख सहित समावे, ऐसा प्रभु त्याग वरकत लागो गुर प्रसाद नानक।

कथा साजन की अचर्च कथा अष्टपदी सार्क संगमुख उजल होत सासंगमल सगली खोत सार्क संग मिटैव मान सार्क संग प्रगट सुज्ञान सार्क संग बुझा प्रभु नेरा सासंग सब होत नेरा सार्क संग पाए नाम रत्न सार्क संग एक ऊपर जतन सात की महिमा वरना कौन प्राणी नानक सात की शोभा प्रमाय सुमानी सात का संग गोचर मिला है सात संग सदा।

सत संग न कथु तावै सा संग अस्थित मान पावै सत संग माया ते पना सा संग नानक परम सु प्रसन्न सा संग दुश्मन समीत साधु का संग महापुनीत सात संग के सोनी बैर सात संग न बिंगा पैर सात संग नाई को मंदा सात संग जने परमानंदा सात संग नाई हो ताप सात संग तजै सब आप आपे जाने सात बढ़ाई नानक सात प्रभु बने आई सात संग न कबूतावै सात संग सदा सुख पावै सात संग बस सात

नानक साधु का कुर्बान। सार का संग सब को लो दारा, सार संग साजन मीत कुटुंब निस्तारा। साधु का संग सोतन पावे, जिस तन ते साव को बरसावे। साध संग धर्म रह करे सेवा।

संसार पर निस्तर सत संग लगा प्रमेठा साधु का संग घाट घाट डीठा सत संग पै आज्ञाकारी सत संग गात पई हमारी सत संग मिटे सब रोग नानक साथ पिटे संजोग सत की मैं

नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो अष्टपदि ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कामर अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी का दृढ़ सुमान जैसे राजरंग को लागत तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी का तीर जिए को जो बस्ता को

जैसे तारी ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी का नाही अवमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचा ऊंचा मन अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पे ना जिन प्रभु आ करे ब्रह्म ज्ञानी सब की ना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चूना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कज बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता ब्रह्म ज्ञानी

प्रेम गनी के कर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख साई निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बनास। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संघ हेता, ब्रह्म

ब्रह्म ज्ञानी सद जीवानी मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर।

मन की वासना मन ते टरै, इंद्री जित पंच दुख ते रहत, नान कोट मदे को ऐसा परस। वैष्णो सो जिस उपर सो प्रसन्न, विष्णु की मात होए भिन्न, कर्म करता होवै ने कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै। मंत्र अंतर सिमरन गोपाल, सब उपर हो कृपाल। आव त्रिड़ा अवरा नाम जपावै, नानको वैष्णो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागा दुष्ट का संग। मंते मिनसै सगला भरम, कर पूजा सगल पार ब्रह्म। सत्संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नितनीत, मंत्र अर्पै विष्णु प्रीत। हर के चरण हृदय वसावै, नैन पैसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्म

भगवान कुछ मिला जिस लिखिया तोर कर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम कृष्ण द्री आया दास संतन पाए तन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगाह प्रवान अपने दास को आप कृपा कराए तिस दास को सब सोजी पराए।

कई कोट एक आत्म निकोरा, कई कोट पर दर्प कोहरा है, कई कोट पर दुख ना करे, कई कोट माया श्रमाए, कई कोट परदेश प्रमाए, जित लावो तित लगना, कर नानक करते की जन करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राज रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बै संतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससिर सूर नखेत्र, कई कोट देवतान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत तारा, नानक जिस पावै तेस तेस निस्तारा, कई कोट राज तामस सातक, कई कोट बेत प्राण सिमर तेरा।

अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक समरा समाई तब पावै मनुख गात पावै प्रभु पावै त पाथर त्रावै प्रभु पावै बिन साथ राखै प्रभु पावै त हर गुण पावै।

तत्काल दैत प्रगटावे ताका अपनी करे बख्शीश ताका लेखना ग्रह जगदीश जो पिंड सब तिसकी रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगट।

प्रसाद नानक सच कह कबू हुए पंडित करे बख्यान कबू मूं धारी लावे ध्यान कबू तरती तिशनान कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबू कीट हस्त तंग हो जिया अंक जोन भरमे भरमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखावे ज्यों प्रभावे त्यों नचावे।

ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावै नानक इहां मुक्ता गै सोख पावै धर्मता होय कर गुरबावै तृण समान कछ संग लावै भोल अश्र मान कूपर करे आस पर पितरता का होय विनाश सत आप जन बलवंतु खिन मैं होय जाए पास मंतु किसन बदय आप ओंकारी धर्म राय करे खुआरी गुरप्रसाद जा का मिटे मान सोचन नानक दुर्गा प्रवान कोट कर्म करे हों तारे श्रम पावे सगले ब्रथारे अनगत पर

प्रकृ पाते बंधन टूटा गुरप सानान खो छूटा सहस कटेला कोटता वह तृप्ता वह माया पाछा पावे अनक भोग बिख्या के कर तृप्ता वह खाप खाप मरा बिना संतोख नहीं को राजा सुपन मनोरथ प्रथे सब काजा नाम रंग सर्व सुख होए बड़पागी किसा प्राप्त होए करण करावणे आपे आप सदा सदा नानक हार जाप।

धनवंत गणी संसार मंत्र मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाना है इसकी सोची जाना नाम संग जिसका मन माने नानक तिने निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुझाए तिसकी जानो तृष्णा बुझाए साध संग

कृपा करह सो सेव को किस्ते डर तैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप सुमाया सूद सूद सूद सीजिया गुरु प्रसाद तत् सब बूझिया तब देखो तब सब समूल नानक सो सुखम सो ये स्थूल न किस जन्म न किस मराए अपने तख्त आप ही करे आपन जावन दृष्ट आन दृष्ट आज्ञाकारी धारी संप्रिट आपे आप सगल मैं आप अनुपयुक्त रज थाप थाप

लाकर और रास लो भी पतंग राम नाम जब हृदय माए नानक पास पी कर जाए जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया सज मान लो मरमोल राम नाम हृदय में तोल हाथ खेप संता संग चाल अवर त्याग बिख्या जंजाल धन तन कह सब कोए मुखु जिन हर दरगाह

रावड़ पागी पाया, सत्संग हर कीर्तन गाया, हर कुबिगन ते साधु राखाए, हर गुण गाए अमृत रास चाखाए, उठ गई संत दरियाया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृत कौ जीवा लनहार, भूखे कौ देव

कीमते आपे पाई, सबकट तिसके सब तिसके ठाऊं, जग जग जीवा नानक हर नाऊं, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे स्मृत वेद पुराण, नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे सगले आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम का संग उदरे सुन श्रवण, कर कृपा जिसे अपना नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गात पाए, रूप सत

मन प्रटाया कहते निरपो बसाना जिसते उपजा तुम्हारे समाना बस मायले बस बढ़ाई ताको भिन्ना करा जाई पूजा बूजन हार विवेको नारायण मिले नानक एको ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक।

पहुंचा, प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दर प्रवटाया, निकी कीरी में काल राखा, भस्म करा लश्कर कोट लाखा, जिसका शासन काटते आप, ताको राख देकर हाथ, मानस यत्न करत भो पात,

अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहू बोल न बहुत प्राणी अगम गोचर प्रम निर्वाणी ग्रह निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किरा न पाई अनक भगत बंधन नेत करें चरण कमल हिरदा सिमरन

नासे तत माए ठांड गुरताई अंध पै अंधुख नाटे पाई जन्म मरण के मिटे अंगे से साधु के पूर्ण उपदेशे पहो चूका निर्भव है बसे सगल ब्याज मन ते खै नसे इसका सत्य कृपा तारी

अष्टपदी पूरे को का समुपदेश पादमित का पीखा सास सिमरु को बिंद मन अंतर की तरह चिंद आसन त्याग तरंग संजना की तू मन मंगा आव छोड़ विनती करो सासन अजन सागर करो हतर के बार लो पंडार नानक पूरे नमस्कार प्रेम कुशल साया नंद सासन पंच परमानंद नरक निवार उधार जियो गुण गोविंद अमृत रस अमृत रस पियो चित चित्त नारायण एक एक रूप जाके रंजन एक गोपाल दमोदर दीन दयाल गुप्तन पूर्ण गोपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का एधार कुछ लो सत के बचन अमरीक लाल एहतन है सुनत कुमार उधार अपने नुक्ते निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हरंगा जय लिखत नाथ वाजे सुन सुन करे प्रभाजे प्रगट कृपाल महात्मा माते नानक रतन के साथे सारण जुग जुग सरणी आए कर कृपा प्रभा मलाए कै बैर भय सबरे नमत ना सत्संग लैन सुप्रसन्न भय गुरदेव पूर्ण होई सेव की सेवा आज जल बकाव तेरा तेरा नाम सुन सुना कहते कर प्रसाद दिया प्रभारी नानक ने भी की बहमारी प्राव की सुत करो सतमीत सावधान आका गीत सुखमी सहज गोबिंद गुरु नाम जिसम मसीत हो तनदार जिस मन वसे सो तनदान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए साफ पाय स्थान भवन होवे आवन जा हर तन खात चले जन सोए नाम से प्राप्त होए हेम सात रुद नाम मृद बुद्ध ज्ञान सब के सिद्ध विद्या तप योग सब ध्यान ज्ञान से इष्ट मिशनान चार पदार्थ सुन प्रगा सब के व सकल ते दास सुंदर चतुर तत्व का बेता समदर्शी एक दृष्टेता हे फाल किस जन के मुख भणै

0: दास सदा निहारे को नेत्रे अमर भय सद सद ही जीवे आत्म रस सुख सह समावे
1: अपने जन को साथ साथ समारे
0: नानक होए।

0: संग न गावे
1: भगवान को पर करे आज
0: फल पितरता का होए विनाश
1: सब से आप जाने बलवंत
0: किन में होए जाए फसमंत
1: किसे न बदे आप अंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुवारी
1: दुख प्रसाद जाता मेरे महान
0: सो जन नानक दरगाह परवान
1: और कर्म करे हों तारे
0: श्रम पावे सगले बिरथारे
1: अनेक तपस्या करे अंकार
0: नरक स्वर्ग फिर फेरे अवतार
1: अनेक जतन का तन नहीं गवे
0: हर दरगाह को कैसे गवे
1: आपस को जो भला कहावे
0: किसे भलाई नित न आवे
1: सर्व किए जाका मन होए
0: नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब जब जाने मुझसे सच होए
0: तब इसको सुख ना ही कोए
1: जब जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब तारे को बैरी नहीं कर
0: तब लग निश्चल ना ही तीत
1: जब लग वो समाए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: तब के पर बंधन छूटा
0: और प्रसाद नानक हो छूटे
1: सांस करे लखो तावे
0: तृप्त ना आवे माया पाछे पावे
1: नै
0: तृप्त आवे खप खप मरे
1: बिना संतोष
0: सुपनम नोर ब्रिथे सब काज बट भागी किसे प्राप्त होए सदा सदा नानक हर जात इसके हाथ का विचार प्रभ सोए सबते दूर सबु कैसांग आपे एक आपे अनेक नानक साध ही रहा समाये आपे रचिया सब के साथ
1: आप किन्नो अपन विस्तार
0: सब का सुस्पाव करने हार
1: पिन कहो के छोए
0: हांत नंतर एक के सोए
1: अपने चले ताप करने हार
0: पोत करे रंग पार
1: मन मन अपने माहे
0: नानक कुछ कह न जाए
1: सच सच सच स्वामी
0: गुर प्रसाद किने बख्यानी
1: सच सच सच सच सीना
0: कोट मदे किने बिरले सीना
1: पला पला पला कर रूप
0: अत सुंदर अपार नूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल कई बाणी
0: घट घट सुनी श्रवण बख्यानी

0: संत के दुखन जम ते नहीं छुटे,
1: संत के दुखन सुख सब जाए,
0: संत के दुखन नरक में पाए,
1: संत के दुखन पाए लीन,
0: संत के दुखन शोभा ते हीन,
1: संत के हके को रखा न कोए,
0: संत के दुखन थान प्रष्ट होए,
1: संत के पाल कृपा के करे,
0: नानक संत संग निंदक भीतर है,
1: संत के दुखन ते होए,
0: संतन के दुखन काग ज्यों लवे,
1: संतन के दुखन सब जोन पाए,
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए,
1: संतन के दुखन
0: संत के दुखन सब कौशल है,
1: संत के दुखन तेज सब जाए,
0: संत के दुखन नीच निचाए,
1: दुखी का ठाव कोना है,
0: नानक संत पावे ता होए भीगत पाए,
1: संत का निंदक मात ताई,
0: संत का निंदक टिकन न पाए,
1: संत का निंदक मात प्यारा,
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
1: संत का निंदक राज ते हीन,
0: संत का निंदक दुखी यार दीन,
1: संत के निंदक को सर्व रोग,
0: संत के निंदक को सदा बिजोग,
1: संत की निंदा दोह में दोह,
0: नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख,
1: संत का दुखी सदा पवित्र,
0: संत का दुखी किसे का निमित्त,
1: संत के दुखी को दान लग गए,
0: संत के दुखी को सब त्याग गए,
1: संत का दुखी मांगकारी,
0: संत का दुखी सदा बिकारी,
1: संत का दुखी जन्म मरे,
0: संत की दुख ना सुख ते टरे,
1: संत के दुखी को नहीं खाओ,
0: नानक संत पावे ता लय मिलाए,
1: संत का दुखी है भीत टूटे,
0: संत का दुखी किते काज ना पहुंचे,
1: संत के दुखी को ज्ञान परमाई,
0: संत का दुखी उजड़ पाइए,
1: संत का दुखी अंतर जैसे
0: यूं सांस बिना मृत की लोथा, आपन बीज आपे ही खाए, नानक संत पावे ता लय उबार,
1: संत का दुखी ओ बिलाए,
0: यूं जल भून मछली तड़पड़ाए,
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजा,
0: यूं पावक इंदर नित्रापे,
1: संत का दुखी सुखे केला,
0: यूं ग्वार तिलखी तमाहे दुहिला,
1: संत का दुखी धर्म पे रहत,
0: संत का दुखी सद मिथ्या कहत, नानक जो तिस पावे सोई थिया,
1: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए,
0: संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए,
1: संत का दुखी सदा सहताइए,
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए,
1: संत के दुखी की पूजा नाशा,
0: संत का दुखी उठ चले निराशा,
1: संत के दो में तिष्ठे कोए,
0: जैसा पावे तैसा कोई होए,
1: दया कितना मिटे कोए,
0: नानक जाने सच्चा सोए,
1: सब कर दिसके ओ करने हार,
0: सदा सदा तिसको नमस्कार,
1: सब करो दिन रात,
0: इसे त्या वो सास गिरास,
1: सब परिवर्त जिसका किया,
0: जैसा करे तैसा को किया,
1: खेल आप करने हार,
0: दूसर कौन कहे विचार,
1: बटपागी
0: नानक जन से सलोक, तजो स्यानक सुरजनो, सिमरो हर हर राय, एक आसार मन रखो, नानक दूप करम को जाए, अष्टपदी
1: मानव पीते विचि सव्यान,
0: जीवन कोए के भगवान, भोर न तृष्णा लागे आए, मन के किछ नाही हाथ, जिसका नाम न कंठ परोए, नानक बिगर न लागे कोए, कर मन मेरे सत व्यवहार, सदा सुहेला कर ले दियो, साध संग बिन से सब संग, मिटे पाप गतिये हर बिंद, हर दरगा नानक उज्जल मथा, सदा सदा हर के गुण गाहे, से तनवंत गनी संसार, सदा सदा जानो ते सुखी, इत्युत कियो सो जी जाने, नानक तिने नरंजन जान्या, इसकी जानो तृष्णा बुझे, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, ग्रस्त में सोई निर्वाण, किसकी कटिये गम की फसा, नानक किसे न लागे दुख, सो संत से हिला नहीं डुलावे, सो सेवक को किसते डरे, अपने का जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, गुर प्रसाद तत् सब बुझिया, नानक सो सूखम सोई स्थूल, आपन चलता आप ही करे, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ,
1: आप सगल मैं आप,
0: अनेक दुख तरह छाप उठाप,
1: अब नाशी नाही के खंड,
0: कारण तार रहो ब्रह्मांड,
1: आप
0: जपाए ता नानक जाप, सगल संसार उदरे तन मंत,
1: सगल धारण,
0: प्रभु के सेवक दुख विसार, ਸਰਨ
1: ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਕਿਰਪਾਲ
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪੈ ਨਿਹਾਲ
1: ਜੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ
0: ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਡ ਭਾਗੈ
1: ਨਾਨਕ ਪਾਵੈ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉੱਤਮ ਕਰਮਾਨ
1: ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੇ ਹਰ ਸੰਗ
1: ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ
0: ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੇ ਸੋਏ
1: ਸਭ ਸਾਖੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਰਗਾਨਾ
0: ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ
1: ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੈ ਜਿਸ ਮਹਾਂ

0: सब अपने का हुक्म पछाने,
1: किसका
0: गुण कह एक ना जानो।
1: कौ
0: नानक से जन पूरे,
1: मन मेरे जन की ओर तरे,
0: मन ताने अपना तिन जन दे,
1: जन अपना गुण सता,
0: तो जन सर्व थोक का दाता,
1: इसकी शरण सर्व सुख पावे,
0: इसके दर्शा पाप मिटावे, इस जन की तू सेवा लाग,
1: जान न होई तेरा,
0: नानक तिस जन के पूजो सत पैरा, सलोक सत पुरख जन जानिया, सतगुर तिसका नाम, तिसके संग सिख उतरे, नानक हर गुण गाओ। अष्टपति
1: सतगुर सिखी करे प्रसाद,
0: सेव को गुर सदा दयाल,
1: गुर
0: वचनी हर नाम उतरे,
1: सतगुर सिखे बंधन काटे,
0: गुर का सिख विकार ते हटे,
1: सतगुर सिखो नाम धन दे,
0: गुर का सिख बड़पागी है,
1: सतगुर सिखा हर पल सवारे,
0: नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे, गुर की आज्ञा मन में सहे, हर हर नाम हृदय सत्या
1: के पास,
0: इस सेवक के कार्य रास, इसको होत प्राप्त स्वामी, नानक सो सेवक गुर की मतले, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, अनेक बार गुर को बल जाओ, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, एक के आप नहीं कछ परम, नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाइये, परस चरण गत निर्मल रीत, पार ब्रह्म की दरगाह गवे, मन संतोख आत्म पतिया ने, अमृत दृष्ट पेखे हो संत, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए, सत पुरख पूरन विवेक, अगम गोचर प्रम निर्वाणी, ताकि कीमत किने न पाई, चरण कमल हृदय सिमरे, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, अमृत पीवे अमर सो होए, जाके मन प्रगटे गुणतास, सच उपदेश सेवक को दे,
1: माया का संग न लेब,
0: मन में रखे हर हर एक, नानक परम ओ दुख तैते नासे, आनंद प्या दुख नाठे पाई, साधु के पूरन उपदेशे, सगल व्याध

0: कदी
1: जब कार कछना दृष्टेता
0: पापुन तब कहते होता
1: जब कारी अपन सुन समाद
0: तब बैर विरोध के संग कमात
1: जब स्थावरण कहना जापत
0: तब हर्क सो को किसे व्यापत
1: जब अपना पापा ब्रह्म
0: तब मोह कहा के सोबत पर
1: अपन खेला वर्ती जा
0: नान करने हार न दूजा
1: जब होत प्रभ केवल तनी
0: तब बंद मुक्त को किसको गनी
1: जब एक के हर गम पार
0: तब नरक सुर को कौन अवतार
1: जब निर्गुण पर सहस वाहे
0: जब शिव सकत को के तठाए
1: जब आपे आप अपनी जो उत्तर
0: तब कवन डर कवन कत डर।

0: अब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा,
1: जगन्नाथ निरंजन गोचर गादे,
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे,
1: आप ही सजा
0: नानक अपन रूप आप ही ऊपर
1: ध्यान, निर्मल पुरुष पद होता
0: बिन मैल कहो क्या तोता,
1: ज्ञान निरंजन निरंकार निर्वाण,
0: कौन कौमान कौन अभिमान,
1: केवल जगदीश
0: छल सिद्धर।

0: के साथे कर कृपा प्रभा मिलाए अमृत नाम साध संग लैन पूरन होई सेवक की सेव राम नाम सुन रसना कहते नानक नीवी खेप हमारी सावधान का प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत जिस मन बसे सो होत निधान प्रधान पुरख प्रगट सब लोए भोर न होवे आवन जान नानक दिसे प्राप्त होए बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
1: पदार्थ कमल प्रगास
0: सबके मध्य सगल ते उदास
1: चतुर तत्का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टेता।